FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, आज रविवार है। तदनुसार 7 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

एफ एम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

0: संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है स्वाध्याय।

सदैव बनी रहती है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। निरक्षर लोग भी ज्ञानी बन सकते हैं, बशर्ते वे निरंतर सीखने का अभ्यास करें। हम जब छोटे होते हैं, अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते, तब निरंतर अभ्यास करवाए जाने के कारण हम अक्षरों को लिखना सीखते हैं, उसके बाद लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। धीरे धीरे हम स्मृत होते चले जाते हैं। जो लोग सीखने की दुनिया से दूर रहते हैं, वे जीवन भर निरक्षर बने रहते हैं। हमें सीखने से ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। गुरु हमसे बड़ा हो यह जरूरी नहीं, हमसे गुरु छोटा भी हो सकता है। जो हमें बेहतर गुरु सिखाए वह हमारा गुरु, फिर चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बस सीखने की ललक होनी चाहिए। हमारे माता पिता ने बचपन से ही सीखते रहने के जो संस्कार दिए, वे अब तक हमारे काम आ रहे हैं। माता पिता के संस्कारों के कारण ही आज भी हम सीखने में परहेज नहीं करते, समय समय पर तकनीकी जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस सुप्रभात वेला में संकल्प करें कि हम नित्य कुछ नया सीखेंगे।

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। हम कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, कुछ न कुछ सीखने समझने की गुंजाइश

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था स्वाध्याय। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से वंदना कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगली भक्ति रचना।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।
1: के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञ स्थल पर बुला भेजा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

7:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गजल गायन तारेश दवी की आवाज में। आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। राजस्थानी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे 8:45 पर। प्रातः 8:00 आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9:00 जयपुर केंद्र से। प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11:00 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती निबात। छह बजकर 50 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत।

सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यूं रहेगा, 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:45 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात।
1: धन्यवाद हम बड़ा वाला सब किसान भाई बहन सोरा डे देखी नानू भाई नो राम राम किसान भाई देखो हमारा वर्ण टीम में बड़ा खेती बड़ी में काम काज बड़ो पड़ी ऋतु हुए बस कर मौसम गर्मी में सदी ऋतु गर्मी में मौसम अपने भैया जी खेती बाड़ी में कौन है अपने हाजे हवारे सुबह ठंडा मौसम अपन सुबह सुबह 11 बजे पहले हाजे 4 बजे बाद अपन करी सके किसान भाई क्योंकि गर्मी अपने शरीर हाड़ हम्बा भी राख क्योंकि गर्मी ने केवल मे दूध पे पहलू सुख निरोगी का अपना शरीर हाजो है तो अपना खेती बाड़ी में काम टाइम अनुसार कर खेती बाड़ी नु काम अपना कहीं बीमार पड़ जाए कहीं सर्दी जुकाम थी जाए तो अपना नुकसान थे पुराना समय अपने सावधानी गर्मी समय रखव जरूरी है गर्मी में खास कर अपने खान पान भी ध्यान रखव जरूरी है ठंडू पानी पीव जरूरी है अपने खेती बाड़ी नु काम कर

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत, जो अभी ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गजल तारेश दवी की आवाज में।
1: प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। पहली रचना मेरी वर्तमान हालात से काफी इत्तेफाक रखती है। जैसा कि हम जानते हैं, रंजिशों और साजिशों का दौर है और अपनी ऊंचाइयों पर हैं। ऐसे में मेरे अल्फाज कुछ यूं निकलते हैं। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो।

रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे। दिल में जो है रूबरू कहो, बात मेरे बाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह दुखाओगे ये दिल, तरकीबें इजाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया, कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया, कल की बात थी गुजर गई, आज फिर से याद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। अंतिम शेर इस गजल का सुनिएगा कि करके हमसे बेसबब गिला, सच कहो कि तुमको क्या मिला, करके हमसे बेसबब गिला, सच कहो कि तुमको क्या मिला, दर्द मेरा देख कर यूं तुम, अपने दिल को शाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। इसी क्रम में एक अपनी गीत गजल है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। छोटी सी भूमिका इस गजल की रख दूं कि दो हम सफर जब साथ चले हैं, एक की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हैं, एक पीछे रह जाता है कई बार। जो पीछे रह जाता है वो अपने दिल को अपने मन को किस तरह से समझाता है, किस तरह से खुद को सांत्वना देता है, मैंने उन्हीं भावों को शब्द देने का प्रयास किया है, सुनिएगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा।

मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। चुराने पड़ेंगे तुम्हें रंग तितली से, बागों से कलियां चुरानी पड़ेंगी, तुम्हें प्रेम के गीत रचने की खातिर खजानों से खुशियां चुरानी पड़ेंगी।

मैं बाकी बचे सारे गम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं

अपने कदम देख लूंगा, ये मखमल के गद्दे ये रेशम की चादर तो फिर चुभ रहे हैं, ये बिस्तर तुम्हें क्यों, तुम्हें छत हवेली की हासिल है फिर भी सताता है तूफान का डर तुम्हें क्यों।

0: चलो अपनी कश्ती का दम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। तुम्हारी चमक पर फिदा हर नजर है रोशन तुम्ही से ये महफिल की हर सू। सू का अर्थ है कोना, दिशा। तुम्हारी चमक पर फिदा हर नजर है रोशन तुम्ही से ये महफिल की हर सू। तुम्हें मान बैठी है हीरा ये दुनिया, मैं गुमनाम हूं बन के जंगल का जुगनू। रहेगी उजालों की दरकार तुमको, रहेगी उजालों की दरकार तुमको, मैं रातों के घनघोर तम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बड़े ख्वाब तुम अपनी आंखों में रख लो, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। अंतिम पंक्तियां इस गजल की कुछ यूं हैं। पता है सफलता के अपने सफर में, तुम्हें मुझसे आगे निकलना ही होगा। पता है सफलता के अपने सफर में, तुम्हें मुझसे आगे निकलना ही होगा। लगन लग गई कामयाबी की तुमको, लिहाजा तुम्हें तो बदलना ही होगा। नजर में रखो तुम महज अपनी मंजिल, नजर में रखो तुम महज अपनी मंजिल, मैं टूटी हुई हर कसम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बड़े ख्वाब तुम अपनी आंखों में रख लो, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा, मैं टूटी हुई हर कसम देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वातायन, जो अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई के।

0: फिल्म अनहोनी का दो गाना था, लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया, सत्येंद्र की बोल थी, रोशन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: 11,000 लड़कियां, इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी आशा भोसले की। एन दत्ता का संगीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये नफ़मा आपने सुना।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

0: मेरा नाम जोकर स्वर्ग गीत था आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोलों को शुरू में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते
1: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म बॉबी का ये गीत है लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत आपने सुना। विठल भाई पटेल की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, यही थी हम है राही प्यार के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

0: समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित

0: दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद

0: क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस वक्त सुबह के 8:15 हुए हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम खुश जलसे का।

अन्न सिर्फ शरीर को ऊर्जा नहीं देता, ये खून बनकर हमारे दिमाग और ख्यालात को भी बनाता है। अन्न सिर्फ रसोई में पकने से पवित्र नहीं होता, उसे पकाने वाले की भावना और कमाने वाले की मेहनत, ईमानदारी का भी असर उस पर पड़ता है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अगर आप सब्र और शुक्र से खाना खाते हैं तो आपके शरीर के साथ साथ आपकी रूह को भी सुकून मिलता है। दोस्तों, खाने से पहले 2 सेकंड उस अन्न को उगाने वाले किसान और अपने रब को शुक्रिया अदा करें। डिजिटल फास्ट रखें, यानी खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल बंद रखें। पूरा ध्यान अपने निवाले पर दें ताकि तन और मन दोनों स्वस्थ रहें।

दोस्तों, का क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान अब मानता है कि हमारे पेट को दूसरा दिमाग कहा जाता है। हमारे पेट में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं। हम जो खाते हैं वो सीधे तौर पर हमारे मूड, तनाव और खुशी के हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन को नियंत्रित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर का 90% सेरोटोनिन यानी वो हार्मोन जो हमें खुश रखता है हमारे पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। इसीलिए अगर खाना खराब या भारी होगा तो इंसान चिड़चिड़ा और उदास महसूस करेगा।

दोस्तों, वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि पानी और भोजन के अंदर भावनाओं को सोखने की क्षमता होती है। अगर आप गुस्से में पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो उसकी संरचना बदल जाएगी और ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है।

दोस्तों, आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम थाली में खाना उतना ही लेंगे जितनी भूख होगी। शादी पार्टियों और घरों में जो खाना बच जाता है उसे डस्टबिन में डालने के बजाय दूसरे जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे।

दोस्तों, विदेशी पैकेट बंद खाने की जगह अपने आसपास यानी स्थानीय मौसमी फल, मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और स्थानीय सब्जियों का अपने डाइट में शामिल करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी दोस्त अस्मा खान को फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए अलविदा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत, सीमा मिश्रा व साथियों की आवाज में।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।

मुख्य समाचार। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश

नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि यह परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में

0: ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
1: जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों को नष्ट करने की जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है इस पर विशेष रूप से चर्चा। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है जिसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारे जो निगरानी है साइबर क्राइम में उसको हमने बढ़ाया है।
0: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण फलौदी बालोतरा पाली बाड़मेर जैसलमेर सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायड़े ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर

0: राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं। हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को नहीं तो कहीं की छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहां जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहां जा रहे हैं, आप फिट रहेंगे।
0: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई कुछ चुनिंदा गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें।

0: सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

0: जापान।
1: के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: बदल पे।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिस्म में दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: जी, जी, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

0: ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहां हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जो तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जाकर के सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने। उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहां से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहां जहां हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहां पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहां जमीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ।
3: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: जी ये पास हूँ सच कर। ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं। ये देखो
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल।

0: जवान हो मेहनत कर सकते हो,
1: डबल जवान 24 घंटे दिन में काम कर सकते हो, कुछ करा के देख ले।
0: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता।
1: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
0: ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
1: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक निर्देशक पटकथाकार उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस

0: एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और रेमेडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो नाम थे उसके। और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन वैसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था
0: ना, था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था,

0: एडिटिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस गए, नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो बोला कि मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है। हाँ। अजीब दास मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे लिए
1: कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक

0: वो इतने आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके, क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाए और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देते थे उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: की थी,
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कहा आप ले लो, यू नो ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो

0: संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस की एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सबने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
0: ये एक बात होती है टेरेंस, में बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
1: करेक्ट।
0: वो हर चीज से डरता है।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो होने के लिए,
1: हाँ,
0: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होता है।
1: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो
0: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
1: खुश हो
0: तो खुशी मिल गई।
1: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
0: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
1: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
0: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
1: नहीं होता, वो अकल बाद में, फिर जब जमीन पर उतरा मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे

0: कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: गया।
1: ये गीत तो हमने सुन लिया।
2: हाँ,
1: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
2: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
1: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत धुत थे, आज भी है।
2: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मैंने क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे ये बहुत कम है। तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया। है ना,
0: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है,

0: मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी, और कोई गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो कई हद तक मैं सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
0: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था और
1: अच्छा।
0: मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था, शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
1: वाह वाह।
0: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ
0: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो
1: हाँ
0: मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ। लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने लगा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
1: फिर
0: मैंने
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है
1: वो वाला
0: हाँ
1: डांस
0: हाँ
1: सेक्शन।
0: हाँ वो वाला हाँ। तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे लेकिन अभी
0: हाँ,
1: पहले इसको।
0: हाँ। तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो जो तुम्हारी ट्रेनिंग है लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: कहानी है,
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी वियनीज वॉल्स वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे,
0: हाँ।
1: माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज
1: में
0: हाँ,
1: और
0: फिल्मों
1: कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियो

0: अलग होती है, उसके nuances अलग होते हैं,
1: एकदम अलग सर,
0: उसके ट्रिक्स अलग होते हैं,
1: absolutely.
0: वो तो आप जानते नहीं थे,
1: absolutely.
0: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा.
1: जरूर. तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा. तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है. तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है. रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे. तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ. आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत. It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत, I think I was only 24 years. He says, मैं नहीं करना. मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना. सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है. ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी. और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी. अरे ठीक है. आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन. तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा. मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है. तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल. तो मैं उनके घर गया, नेपिनसी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी. तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली. गाना ARM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया. वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है. सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं. फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा. अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है. अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा. तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए. मैंने अनिल मेहता सर को बता रहे कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए. सर आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है. मैंने देखा, समझ गया और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ. तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ. तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और बड़े कलाकार बड़ी फिल्म थी.
1: हाँ,
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी और फिर हिस्ट्री भी बनी.
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है. तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म.
0: हाँ,
1: फिल्म बन रही है.
0: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जुड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली. तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था.
0: जाहिर सी बात है ना.
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं. लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी. लेकिन ये सत्य नहीं है और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया.

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप।

ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। चलिए ले चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के सफर पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। सईद कादरी का लिखा ये गीत सुनिए फिल्म अनवर से। इस गीत को आवाज दी है रूप कुमार राठौड़ ने।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म अजहर से अरमान मलिक और साथियों की आवाज में। लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म 1920 से अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म सैटेलाइट से अरिजीत सिंह की आवाज में। लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हीरोपंती से मोहित चौहान और साथियों की आवाज में।

0: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र

0: अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैक मेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मर्जू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

0: प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: सुनो सुनो।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आर जी बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भांति का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बाहर छा जाती।

या दामन में समा जाती है, जिया बेकरार होने के साथ बाहर छा जाती है। भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है। तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में, इन फिजाओं में आजा आजा रे, तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है।

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूं मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें। प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी छुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की गली बहुत सकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओर फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ

फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित जी। तो लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को, बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है, तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही, जो कब आएगा, कितना इंतजार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफर का कार्यक्रम हम सफर बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज भी नहीं रह गई, वो रह गुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है।

और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है। और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूं मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन की सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाजों में इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की

सवारी कर रही हैं और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब दिया गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और

0: लगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनकी साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो जी देखिए, उसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहां शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

0: जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।
1: मिलो

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

0: सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?
1: आपके सजन सा

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा, आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

जाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना न तो जरूरत से ज्यादा पका हो और न ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो न हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव

0: भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भर

0: होंगे।
1: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है, खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं। ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे

0: तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मना।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज

0: साथ बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए

0: का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रूपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा क्रेश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

0: सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहन नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल है संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साध

वंदना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू, लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए।

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बीबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
3: वादा।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपनी मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिया का नाम राजा साहब से अभी मिला है। इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया। आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।

0: किबला।
1: अरे भाई किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
1: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई।
1: है?
2: नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गईं, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
1: हद तेरे की, हार हो गई? जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना अब?
2: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
1: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
1: है? हाँ जरूर जरूर। और लछवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
3: जी हुजूर।
4: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
4: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
1: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
4: सौंपो जी सौंपो।
1: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
4: साड़ी मदद?
1: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
4: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
1: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
1: जी जी यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
5: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
6: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इससे माहौल सजा मिलेगी।
5: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
6: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
5: उफ दादी जान,
6: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
5: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
6: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
5: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
6: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में न आए।
5: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
6: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
5: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
6: उफ़, तो अब शहजादियाँ भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीज की तरह।
5: अच्छा कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
6: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
5: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
3: जो हुक्म आ लीजिए। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
5: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में?
7: हुजूर, हुजूर, रहम।
5: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे। कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमे खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीर उल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहनशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। गोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: है शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया।

0: सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत हो, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगम ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी।

0: जमीन से भला ये कैसे हो सकता है कि आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना हो।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: पीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती।

जहां पना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां पना तले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शी, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होठ हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं,
1: ये है सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और एक घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश है। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया की

लाला शीतलदास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है।

0: कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
2: जी।
3: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
2: जी।
3: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में
2: बिल्कुल।
3: तो फिर बैठ के उन्होंने

उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब श्री रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर

0: कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी।
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस, तो उन्होंने महबूब खान को 4 लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये 4 लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने।
1: दिल्ली में।
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में।
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन। हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है देखिए, कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना। तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी, गिल्ट फीलिंग। पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये लिखा किसने है। तो लता दीदी ने कहा नहीं वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई, दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी।
0: लक्ष्मीकांत जी। वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में, बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल

0: है पूरा चार्ज हो गया था और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना। इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है? दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए।
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली?
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूं, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूं, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया।
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला। और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी।
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी,
0: ए मेरे वतन के लोगों की
1: लोगों
0: जो भी
1: रॉयल्टी आई।
0: रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को।
1: और
0: वो
1: एक
0: मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी
1: लोगों,
0: जरूर
1: जरा
0: जरूर।
1: आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देशप्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे। आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था, अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे। हम लोग खड़े तो ये बात थी। एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई। और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे, सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था, इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी,
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज, अखबार। मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं के
1: हमारे वहाँ अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा जाता
1: और आज भी आते हैं वो। मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी

0: सुबह नहीं होती,
1: नहीं होती।
0: बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं दो तीन रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण में वो
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे वो रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये
0: जी,
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए। ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी, उस माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कम्पोज करूंगा, बप्पी लहिरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी। मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम अभी
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था,
1: हाँ,
0: कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी,
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए। लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लहलही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उस

0: उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। तो ये गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से भाईचारा,
1: ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें,
0: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे।

0: और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
1: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
1: जागृति मिली हमको। जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
0: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
1: जी जी।
0: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
1: अच्छा।
0: जब मिल गई आजादी उसके 2-4 साल के बाद, उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से। और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे आप प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए वो आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की। पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आज की सभा की शेष रहे मुख्य कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस, छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाए विषय पर चर्चा। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की देखभाल विषय पर पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज पांडे से प्रीति यादव की बातचीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे।

रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए फिर नजर हमारी कल की प्रातकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रामचरितमानस गाना सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर। प्रातः के 6:40 पर सुनेगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम के तीन बाद का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

प्रातः के साथ बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ देर से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर।

कार्यक्रम सगन संगीत आप सुनेंगे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम बच्चों के मुख से में, जिसे लेकर हाजिर है आपकी दीदी प्रीति यादव। जय हिंद बच्चों। बच्चों, गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है। तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। बच्चों, आपको पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके पास अपना एक एक पालतू पशु पक्षी जैसे चिड़िया, कुत्ता या बिल्ली जरूर

होगी या जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके घरों में भी गाय भैंस बकरी कुछ तो होगा ही जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो बच्चों आज हम बातचीत के दौरान उनके रखरखाव और खानपान की बात करेंगे। हमारा आज का विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की देखभाल। इस विषय पर बात की है पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज पांडे जो कि वर्तमान

0: विषय लिया है, गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की देखभाल। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज पांडे, जो कि वर्तमान में बहुउद्देश्य राजकीय पशु चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद प्रीति जी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस विषय के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, और मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं आपको इसमें जरूर मदद करूंगा।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि गर्मियों में पशु पक्षियों को सबसे अधिक किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
1: देखिए प्रीति मैडम, पशु पक्षी जो है वो हम लोगों से अलग है। अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे गाय भैंस है या कुत्ते हैं या बिल्ली है, उनमें पसीने की ग्रंथियां ही नहीं होती हैं। अब जब पसीने की ग्रंथियां ही नहीं होती हैं तो गर्मी की वजह से उनको बहुत ज्यादा हांफने की समस्या होती है। आपने देखा होगा कि कुत्ते और बिल्ली अपने शरीर का तापमान सही रखने के लिए हांफने लग जाते हैं। उसी प्रकार से भैंसे हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी चमड़ी भी काली है और पसीने की ग्रंथियां ना होने की वजह से उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और इसकी वजह से पशुओं को हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, और हीट स्ट्रेस के अंदर शरीर का तापमान बढ़ जाने से बुखार हो जाता है और जोर जोर से हांफने लग जाते हैं, और कई बार तो पशु जो है शॉक में भी चला जाता है और मृत्यु भी हो सकती है।
0: जी डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि पशु पालकों को अपने पशुओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था करनी चाहिए?
1: ये मौसम के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए गर्मी से बचाव के अपने को सारी उपाय करने पड़ेंगे। जो भी आपका का पशु वाड़ा है हवादार रहना चाहिए, और आपके जो भी वाड़े में अगर गर्मी हो रही हो तो ऊपर इसमें छिड़काव करें पानी का। दिन में पशुओं को विशेष आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी की जरूरत बढ़ जाती है खासकर दुधारू पशुओं में, क्योंकि वो दूध दे रहे हैं तो उनको और भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जो दुधारू पशु है उनको और भी आपको उनका ध्यान रखना है। बाकी सभी पशुओं को पानी आप जितना दे रहे थे उससे बढ़ा दें, कम से कम दिन में 4 बार पानी दें। अपने पशुओं को नहलाएं टाइम से, सुबह दोपहर, कम से कम दोपहर में नहलाएं जिस समय बहुत ज्यादा तापमान होता है। इस तरह से अपने को एक विशेष अपने को ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको अपने पशुओं को नमक भी खिलाना चाहिए, इसके 2 फायदे होते हैं। शरीर से निकलने वाले जो तत्व है नमक उनकी पूर्ति करता है, दूसरा है कि नमक देने से पशु पानी भी अधिक पिएगा, और अगर वो पानी सही मात्रा में शरीर में जाएगा तो इस तरह की जो समस्या जो गर्मियों में पानी की कमी से होती है वो सब नहीं होंगी।
0: जी ये तो रख रखाव की बात हो गई, अब गर्मी में पशुओं के खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए?
1: खान पान में बदलाव करना गर्मियों में अति आवश्यक है। सबसे पहली बात ध्यान में रखने की है कि खाना कब दिया जाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि खाने का समय वो होना चाहिए जिस समय ज्यादा गर्मी नहीं है। तो सबसे कम गर्मी कब होगी? सुबह जल्दी और शाम को सूरज डूबने के बाद। ऐसे समय में खाना देने से पशुओं में जो पाचन क्रिया के दौरान जो गर्मी पैदा होती है वो कम होगी और पशुओं में हीट स्ट्रेस कम होगा। इसी के साथ साथ अपने को कुछ बदलाव, देखिए खाना कम खाते हैं पशु गर्मियों में कम खाते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेयरी फार्म है जिसमें आपकी बंदी है तो अगर आपका दूध कम हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा, तो उसको कवर करने के लिए हमें कुछ अलग तरह के भी पदार्थ देने पड़ते हैं जिनको बाईपास फैट या प्रोटीन कहते हैं। ऐसे खाने से वो जो उनके शरीर में गर्मी कम पैदा होगी लेकिन वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जाएगा और सीधे जाके आंतों में जाके शरीर को लग जाएगा, तो इससे आपका जो भी पशुओं से जैसे आप दूध पैदा कर रहे थे वो सही मात्रा में और होगा, उचित मात्रा में होगा, और आपको इस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।
0: जी डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि घरेलू पालतू पशु जैसे कुत्ते और बिल्लियों की देखभाल हम कैसे करें? अधिकतर लोग घरों में पालते हैं तो इनका हम कैसे रखरखाव करें?
1: जी देखिए, घरेलू पशुओं के अंदर जैसे आप कह रहे कुत्ते और बिल्ली है आपके पास अगर, तो उनमें क्या समस्या आती है कि वो अपनी जीभ को बाहर करके जोर जोर से सांस लेते हैं और इसकी वजह से कई बार उनके डाइजेशन में दिक्कत आती है, और इसके लिए अपने को उनको ठंडी चीजें जैसे कि खट्टी छाछ या आम का रस, जिस तरह से हम लोग भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं बिल्ली और कुत्तों को आप वो दे सकते हैं। इस समय में जैसे हम लोग ORS का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से कुत्ते और बिल्ली को भी आप ORS दे सकते हैं जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन या के शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, और एसिडिटी को रोकने के लिए कुछ दवाइयां भी आती हैं। अगर आपके पशु को उल्टी या दस्त या इस तरह की समस्या आ रही है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उनका इलाज करना भी जरूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं पक्षियों की। या फिर जो जानवर बाहर सड़कों पर रहते हैं

0: आम लोग उनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: जो भी पशु सड़कों पर है, जैसे पक्षी है या दूसरे भी पशु है, कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं जो भी बाहर घूम रही है, उनको भी गर्मी से बचाने के लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं। खासकर उनके लिए पानी का कोई ना कोई स्रोत उनके लिए अगर आप उपलब्ध करा दें तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि ज्यादातर पशुओं को यही दिक्कत आती है गर्मियों में कि पानी पीने का मिल नहीं पाता। खासकर साफ पानी जो अगर पशुओं को इस समय मिल जाएगा या पक्षियों को, वो स्वस्थ रहेंगे।
0: डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बड़ों की और बाहर की बात, अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं वो बहुत पसंद करते हैं जानवरों को पालना और वो स्नेह भी रखते हैं, तो वो इस प्रक्रिया में कैसे भाग ले सकते हैं कि वो उनके लिए कुछ करें?
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारे बच्चे हमारे अस्पताल में जो भी सड़क पर घूमने वाले पशु या पक्षी है उनको लेके आते हैं और उनका बहुत ही स्नेह रहता है पशुओं के साथ। तो बच्चों, आप भी ऐसे पशु जो लग रहा है कि अच्छी तरह चल नहीं पा रहे हैं या उनको आपको महसूस ऐसा हो रहा है कि कोई पक्षी है जो गिर गया है, तो उसको आप अस्पताल ला सकते हैं इलाज के लिए, या फिर उनके लिए आप घर पे अगर कोशिश करें, अगर उनको पानी की व्यवस्था करें तो वो भी दे सकते हैं उनको। पानी के अंदर उनके ग्लूकोज मिला सकते हैं पक्षियों के लिए खासकर, और अगर कोई पक्षी अगर इंजर्ड हो गया है तो उसको ऐसी जगह रखें जहां पे ज्यादा शोर ना हो, अंधेरी सी जगह पे रखें, और आपको लगता है कि अभी भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर डॉक्टर से सलाह ले, हमारे पास आए अस्पताल में तो हम आपकी और मदद करेंगे।
0: जी डॉक्टर साहब, अब अंत में आप पशुपालकों और अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: पशुपालक जो है इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है। इसीलिए कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना है कि पशुओं को पानी जितना दे रहे थे उसका करीब डेढ़ गुना पानी पिलाएं, पशुओं को समय समय पे नहलाएं, गर्मी से बचाने के लिए अपने वाड़े में अच्छा हवादार माहौल रखें, मान लीजिए कि अगर आप टीन शेड है तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, साथ में आप कुछ खाने में बदलाव कर सकते हैं जिससे कि का प्रोडक्शन डाउन नहीं हो, खासकर कि बाईपास फैट प्रोटीन अगर आप देंगे तो अच्छा रहेगा। अब यही मौसम है कि पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए बारिश का मौसम आने से पहले और बारिश के मौसम के एक बाद। इस मौसम में कुछ बीमारियां भी आएंगी, उसके लिए भी अपने को तैयार रहना चाहिए, जैसे दस्त हो सकता या लू लग जाना, ऐसी समस्याएं अगर आती हैं तो पशु चिकित्सक से मिलकर जरूर इलाज कराएं। और घर में भी अगर आप इलाज करते हैं जिसमें कि ORS सबसे अच्छा है, एक बाल्टी पानी में थोड़ा शक्कर नमक और कुछ नींबू का रस मिलाएंगे और पशु को देंगे तो उसको लू लगने में आराम मिलेगा। इसी तरह से इस मौसम के अंदर थन की बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, इसलिए थनों की सफाई का ध्यान रखें। जब भी आप अपने पशु का दूध निकालें उसके बाद लाल दवा से या फिर सेवलॉन से पशुओं के थन को धो लें, थोड़ी देर के लिए पशु को खड़ा रखें। इस सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये मौसमी बीमारियां जो इस समय हो रही है वो नहीं होंगी। इसी प्रकार पशुओं को टीकाकरण भी कराना जरूरी है इस मौसम में। जैसे अगर आप बकरी पालक हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि एक बीमारी होती है एंट्रोटॉक्सीमिया की, बारिश से पहले इसका टीका लग जाना चाहिए। इसी प्रकार से सरकारी हमारे विभाग से भी इस समय आपको खुरपका मुंहपका का टीकाकरण हो रहा है, बारिश से पहले आप गलघोंटू का भी टीका बड़े पशुओं को लगाना चाहिए। ये खास टीकाकरण है जो गर्मियों में हो जाना चाहिए बारिश से पहले।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आशा करती हूँ कि वो इसका लाभ जरूर लेंगे। आप हमारे यहाँ आए और चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्रीति जी, और मुझे भी बहुत खुशी है कि आपने ऐसे विषय में जो कि इस समय ज्वलंत विषय है पशुपालकों के लिए, उसके लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, धन्यवाद।
2: तो अभी आपने सुना डॉक्टर पंकज पांडे से पशु पक्षियों के देखभाल विषय पर बातचीत। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुन लेते प्यारा सा गीत और संदेश।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भोजन खाते हैं वह सुरक्षित और स्वच्छ होना कितना जरूरी है। इसी महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, स्वस्थ रखता है और बढ़ने में मदद करता है, लेकिन भोजन साफ और सुरक्षित न हो तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ताजा, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। बच्चों भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोना, फलों और सब्जियों को साफ करके खाना, खुले में रखी हुई चीजों से बचना और साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। साथ ही हमें भोजन की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले। तो बच्चों आज हम सब मिलकर संकल्प ले कि हम हमेशा सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। साफ भोजन, स्वस्थ शरीर, यही है जीवन की सच्ची तासीर। ये तो थी चर्चा। अगली चर्चा की ओर चलते हैं। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस जो कि 12 जून को होगा। बच्चों हर साल 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमें यह याद दिलाया जाता है कि हर बच्चे का अधिकार है पढ़ना, खेलना, सीखना और अपने सपनों को पूरा करना। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। इस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें, पेंसिल और खिलौने होने चाहिए, न कि काम के भारी भरकम औजार। लेकिन आज भी कई बच्चे गरीबी और अन्य कारणों से मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इससे उनकी पढ़ाई छूट जाती है और उनका भविष्य प्रभावित होता है। प्रिय बच्चों, शिक्षा ही वह शक्ति है जो जीवन को बेहतर बनाती है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, नई बातें सीखते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा पढ़ाई का महत्व समझना चाहिए और अपने आसपास के बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों हम आगे की चर्चा जारी रखें, इससे पहले सुन लेते हैं एक संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www

0: www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाए विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया। बच्चों क्या आपको छुट्टियां पसंद है? छुट्टियों में घूमने जाना भी अच्छा लगता है, पिकनिक मनाते हैं, खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को था, इसी अवसर पर हम बात करेंगे छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाए। प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां, कप और प्लेटें उपयोग के बाद अक्सर कचरे में फेंक दी जाती है। यह प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता और धरती, नदियों, समुद्रों तथा जानवरों को नुकसान पहुंचाता रहता है। बच्चों जब भी आप छुट्टियों में कहीं जाएं, अपने साथ पानी की पुन उपयोग की जा सकने वाली बोतल ले जाएं, कपड़े का थैला इस्तेमाल करें और प्लास्टिक की चीजों का कम से कम उपयोग करें। बच्चों पिकनिक के बाद अधिकतर ऐसा होता है कि कचरा हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो उस पे ध्यान देना है, कचरे को इधर उधर न फैलाएं और उसे हमेशा डस्टबिन में डालें और या फिर अपने साथ उसे इकट्ठा करके ले आएं और जहां पे भी डस्टबिन हो आप उसमें डालें। पर्यावरण को इससे नुकसान होने से बचेगा। याद रखिए बच्चों, पर्यावरण की रक्षा केवल बड़ों की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। जय हिंद बच्चों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन

0: गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जारी है प्रोग्राम तराने नए पुराने।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग किया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: जयपुर अजमेर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थान में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार।

0: 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: कम से

0: जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न, दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख, पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि 4 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के संयुक्त आयोग की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जल डमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है।

0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: इधर प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट, फिटनेस प्रेमी, विद्यार्थी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। इसके साथ ही सप्ताह भर चले जागरूकता अभियान का भी समापन हुआ। वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली सहित कई स्थानों पर आम नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर और योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट UG परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। NTA ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का पूरे समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा से होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंग नहर निर्माण शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। लगभग 2,500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 300 से ज्यादा गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में ये परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने

0: वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ये परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजातीय बहुल इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। शहरी क्षेत्र के सूली डूंगर सनसेट प्वाइंट को नगर परिषद ने मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल करीब 38.5 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा।
1: सूली डूंगर में अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है, क्योंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया, जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिल्डर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी, क्योंकि हमने इसकी बिल्ड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिल्डर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास, तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था, काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था, तो इसको रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी का दौर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में जहां एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल रहा, वहीं घड़साना क्षेत्र में तेज बरसात हुई और 3 GD इलाके में ओले गिरे। बालोतरा में दिनभर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जैसलमेर में तेज गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। पाली में भी लू और उमस के चलते लोग बेहाल रहे। यहां चिकित्सा विभाग ने आमजन को ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने और जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढककर निकलने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 7 जिलों में बारिश और 2 जिलों में हीटवेव की चेतावनी है। पाली में 16वीं राज्यस्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबला अलवर और जयपुर के बीच हुआ। इसमें जयपुर की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने विजेता और उप विजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिले की अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात के भुज से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पाली

0: मारवाड़, सूजत रोड, फालना, सोमेसर और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों का काम भी प्रगति पर है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक पानी बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने लाखोटिया उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपदान के कार्यक्रम हुए, जल चौपाल लगाई गई, पानी को बचाने की शपथ ली गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बावड़ियों, जल स्रोतों की साफ सफाई सहित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत के काम किए गए। अभियान के दौरान जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान 2026 की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां रखी गईं, वहीं जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी हुए। नगर निगम कार्यालय और जिले की सभी नगर पालिकाओं में इन दिनों लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून तक लगने वाले इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। सुगम, सरल और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम जोरों पर है। प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रश्नों के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसे HLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 14 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। लोगों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस काम में देसूरी ब्लॉक का तिखी गांव जिले में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी ग्रामीणों ने खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर मिसाल कायम की। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना रहा। इस दौरान साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों खांडी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने किसानों को संतुलित और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताकर उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने को कहा। अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन दिनों 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि ये दवा 29 जून तक दी जाएगी। जिले के सभी उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरा, भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक में दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा पुनर्मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख, पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला माए आंधी और मेह बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो। समाचार आरएस आ गए। मैं रचना पारीक और अब समाचार।

0: विगतवार भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई। इन बैठक री सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया विदेश मंत्री सुगियोनो करी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर कया के हाल राबरसा में दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक भागीदारी हुई। वना कया के बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महताऊ खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक समेत द्विपक्षीय इमदाद रा सगड़ा पहलवा माथे गहरी चर्चा हुई। दोनों मंत्री बहुपक्षीय समन्वय ने आगे बढ़ावा और भारत आसियान संबंधा ने मजबूत करवा माथे चर्चा करी। इनसे पहले आपरा उद्घाटन भाषण में डॉक्टर जयशंकर कया के चार बरस रा अंतराल रे पछे दोनों देशा रा संयुक्त आयोगरी आ बैठक हुई है। केंद्र सरकार कहो कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमत में भारी बढ़ोतरी रे बावजूद भारत में एलपीजी गैस अब कम कीमत में मुहैया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कहो कि भारतीय सिलेंडर किनी भी पड़ोसी देश के मुकाबले सस्तो है। सरकार कहो कि पश्चिमी एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में देरी रे बावजूद होमोर्ज जल डमरू मध्य से ऊर्जा मालरी आवाजाही जारी राखबा में सफल रहो। मंत्रालय मुजब देश में पेट्रोलियम उत्पादारी कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इन बरसों विषय समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन है। ओ दिन खाद्य सुरक्षा ने एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी रूप में मजबूत बनावारो मौको देवे है। इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रखने सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में वना नागरिकों स्वस्थ खान पान री आदता डालबा और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनावा माए योगदान दे बारी अरज करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोशल मीडिया संदेश माए सगड़ों सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ कानी जाग जगाबा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपनावारो संकल्प ले बारी अरज करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रहा 77वां कार्यक्रम में भाग लेना। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि साइकिल चलाबा से पर्यावरण ने साख रखबा में इमदाद मिले है। वना साइकिल चलाबा से स्वास्थ्य में होबा वाला फायदा रो जिक्र करता थका कहा कि लोगों ने इन पहल में शामिल होर फिट इंडिया रा सपना ने साकार करनो चाहिए।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहे। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: मठी ने प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम दिया। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन ने बढ़ावो दीवारा लगा सो साइक्लोथॉन रखी गई। इनमें बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट, फिटनेस प्रेमी, पढ़निया, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिक भाग लेना। इन आयोजन में स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता रो संदेश दियो गयो। इन सागे ही सप्ताह भर चल रियो जागरूकता अभियान भी पूर्ण हुयो। मठी ने नगर स्टेडियम में साइकिल रैली काढ़ी गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली समेत कई ठोड़ा माथे लोगा समेत पुलिस अहलकार और कर्मचारी साइकिल चला लोगा ने फिट रहबारो संदेश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई री 12वीं कक्षारा परीक्षारा नतीजा जारी होबा रे पछे इनसे जुड़िया मुद्दारी जांच और उत्तर पुस्तिकावा ने फेरो जांचबा खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख है। बोर्ड रा सोशल मीडिया पोस्टर मुजब ये पोर्टल आधी रात तक खुलिया रहेला। इन भी सरकारी कानियो नीट यूजी परीक्षा ने साफ कोई तरीकों कराबा खातर सगड़ा सुरक्षा उपाय पक्का करिया जा रिया है। ये परीक्षा 21 जून में वेला। एनटीए सोशल मीडिया माथे चल रही पेपर लीक और उनकी बिक्री से जुड़ी बात नकार दियो है। वना पढ़ानिया और उनका घराला सो इन बेबुनियाद माथा माथे भरोसा नहीं कर बारी सलाह दी है।

0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कया के चोखी शिक्षा देनो मां की सबू पहली प्राथमिकता वेनी चाहिए। वे कया के ज्ञान रो पूरा समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा सु होवे है। इन खातर सगड़ा ने मिलर उन्हें चोखो बनानो चाहिए। श्री बागड़े आज लोक भवन सु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर 23वां स्थापना दिवस माते संबोधित करिया हा। इन मौके वणा गंग नहर निर्माण शताब्दी बरस माथे पानी बचावारो संकल्प ले बारी आरज करी। केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्वविद्यालय रा स्थापना दिवस री शुभकामना देता थका विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति सु जुड़िया मूल्या माथे काम करबारी जरूरत जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना ने सर्वोच्च प्राथमिकता देता थका जरूरी काम करवाया जा रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपया की लागत इन परियोजनाओं 320 गांवों की करीब 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि ने लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों पानी मुहैया वेला। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के आवता वर्षा माए आ परियोजना बांसवाड़ा जिला री खेती री माली व्यवस्था ने नई दिशा देवा वाली खास सिंचाई परियोजना माए भेली वेला। इनरो पूरो होबारे पछे किसाना ने साल भर खेती खातर पानी मिल सकेला। उन्हें कया के इनसू जमी माए पानी रो स्तर सुधरेला, पानी री बचत वेला और गांवाई हलकारा विकास ने मजबूती मिलेला। सागई आ परियोजना बागड़ हल्का रा जनजाति बहुल इलाका सामाजिक और माली विकास माए मील रो पत्थर साबित वेला। जैसलमेर माए पर्यटन ने बढ़ावो देवारी तैयारी शुरू हो चुकी है। शहरी हलकारा सूली डूंगर सनसेट पॉइंट नए नगर परिषद मॉल रोड री तर्ज माए बनावारी खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपत लाल सिंह सोढ़ा बतायो कि इन प्रोजेक्ट नगर परिषद ने हर बरस करीब 38,50,000 रूपया रो राजस्व मिलेला।
1: सुनी डूंगर पे अभी जो विकास कार्यक्रम जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। क्योंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिल्डर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिल्ड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिल्डर ने रेट अभी 38 लाख के आसपास तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे। वो एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था तो इसको रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में मौसम रो मिजाज लगातार बदल रही है। एक और कई जिला में आंधी चालबा और मेह बरस बसु लोगों ने गर्मी और उमस से राहत मिली तो बठी ने कई हल्का में तेज गर्मी आपरूप कहर बरसारी है। प्रदेश का श्रीगंगानगर बालूतरा जैसलमेर पाली में तेज धूप और गर्म हवा चालबा से आम जीवन बेहाल है। बठी ने घरसामाना माए तेज बरसात रह सागे ओला पड़वारा समाचार है। चिकित्सा महकमो तेज गर्मी रे चलता आमजनों ओआरएस नींबू पानी छाछ रो सेवन करवा और घरासों से ढाकर 12 आबारी सलाह दी है। मौसम महकमो आज 12 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इंडरे इतर काल 7 जिला में बरसबा और 2 जिला में हीट वेव री चेतावनी दी गई है। पाली माए 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी होड़ आज पूरी हुई। फाइनल मुकाबलो अलवर और जयपुर के बीच हुयो। इनमाए जयपुर की टीम 3-100 जीत दर्ज करी। समापन जलसा माए मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संग्रह अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत विजेता और उप विजेता टीम समेत चोखो प्रदर्शन करवा वाला खिलाड़िया ने इनाम दीना। उपभोक्ता मामलात महकमारा ई जागृति मंच ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिलियो है। वो सम्मान तकनीक रह जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल काम खातर दियो गयो है। उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहो के ई जागृति उपभोक्ता शिकायतारा तुरंत निपटारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रियो है। इन वर्ष 1 जनवरी ने शुरू कराया गया ईआई आधारित मंच माथे हाल ताई 2,29,000 बत्ता उपभोक्ता मामला रो पंजीकरण करियो गयो जबकि 2,07,000 बत्ता मामला रो निपटारो करियो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित कराया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। ये सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून तय राय दे सको हो।

नरेंद्र मोदी ऐप माई और माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी आपका विचार भेजा जा सके है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कराबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तक खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला माए आंधी और मेह बरस बारो येलो अलर्ट जारी कयो। इन साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमार 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला।

0: पुराना हो तो पता चल सकता है, कहां से पता चले? कम से
1: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करें, लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।
2: हाँ,
1: बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: सरकार बनिए सतर्क रहिए।
5: सुनिजी प्रोजमेर का ये अमेर चैनल है, 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ग्राम भारती सुन बाड़ा सगला किसान भाइयों ने विशाल गोड़ रो घुणुणु राम राम सा। और किसान भाइयों देखो, महीनो है जून को, तो बरसात आ रही है, खटी तावड़ो तपरियो है खटी जी। तो आज अपना किसान भाइया बात कर सा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। कभी किसान भाई आपा ई बारे में सोचो कि कोई जमाना में अपनी जी घर की महिला है जी दूर दूर लकड़ियां ले आती, और अगर आप बात करा तो कई किलोमीटर दूर लकड़ी लाबा बने जाऊ पड़तो, तो वाक जीवन पर कई प्रभाव पड़तो। आज देखो सा आप उज्ज्वला योजना की बात करा तो एक प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बढ़िया योजना है जो कि जन कल्याण योजना है। ई योजना के विषय में आप अपना आज विचार व्यक्त करा, जिन्हें आ योजना एक सरकारी योजना ही कोनी बल्कि आ करोड़ों गरीब महिला के जीवन के सम्मान के लिए स्वास्थ्य के लिए एक नयो प्रकाश ले रबाड़ी योजना है। जी आपा जाना कि भारत एक कृषि प्रधान और एक विकासशील देश है, जटे लंबा समय तक ग्रामीण क्षेत्र में भोजन बनाने के लिए लकड़ी उपला कोयला और कई प्रकार का पारंपरिक ईंधन को उपयोग हुआ करतो। कई बार आपा देखता जिया स्टोव वगैरह बे जलाता तब हम घास लेटू भी अपना स्टोव जलाया करता, आ ईंधन निकल वालो धुओं हो वो अपनी जी की महिला ही वह बच्चा हा बाकी स्वास्थ्य के लिए बेजाई हानिकारक हुयो करतो। अब विश्व संगठन की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू धुआं का कारण हर वर्ष अपनी जी घर की महिला ही बाकी बने श्वसन संबंधी बीमारियों के बन शिकार हो पड़तो।

आ समस्यान ध्यान राखता हुआ भारत सरकार 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बालिया जिला शु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुभारंभ करो। ई योजना को मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवार की महिला ने स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करार बांका जीवन स्तर में सुधार लान। आप अगर बात करा ई योजना के उद्देश्य के बारे में तो ई योजना को मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवार में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराण, महिला ने धुआंसू उबाली बीमारियों बचाऊ और पर्यावरण प्रदूषण कम करनू। पर्यावरण प्रदूषण कम किया उसी कि जिया आपा पहला लकड़ी जलाता कोयला जलाता तो बामू कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तो विश्व कहे कि आपनों पर्यावरण पर भी फर्क पड़तो। तो ई योजना के तहत पर्यावरण प्रदूषण भी कम करनू एक मुख्य उद्देश्य है। और देखो सा महिलाओं के जीवन ने सरल और सुरक्षित बनानो। अपनी घर की महिलाएं अत्ता सारा काम करे पूरे दिन में है तो बने आपने प्रधानमंत्री जी इस चीज के बारे में ध्यान रखता हुआ ई योजना को उद्घाटन करियो है। देखो सा महिलाओं ने सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने भी ई योजना को उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग ने बढ़ावा देनु। और देखो आपा से जाना हाँ कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिकी प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर जा लकड़ी इकट्ठी कर लाया करती है बा समय पर बा को श्रम भी बन बहुत करनी पड़तो मेहनत करनी पड़ती है भी के धुआं निकलना अपनी महिला के जिको धुआं जो को जातो भी को नुकसान स्वास्थ्य पर अलग पड़तो हो। जना अगर बात करा तो लकड़ी और कोयला के धुआंसू नुकसान की तो आंखिया में जलन होती फेंपड़ा की बीमारियां महिला में हो जाती और देखो दमा और खांसी जिया के लिए समस्या भी उत्पन्न होती। बच्चा और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरो प्रभाव पड़िया करते हो और ई स्थिति में स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता लंबा समय तक महसूस करी जा रही ही। तो ई योजना के तहत ऐसा उद्देश्य अपना पूरा हुआ। अब अगर आप बात कराई कि काई विशेषता है तो विशेषता है कि गरीब परिवार की जिकी महिला है बी के नाम पर गैस कनेक्शन दे है एलपीजी सिलेंडर और गैस चूल्हा की सुविधा इन माइन उपलब्ध है। महिलावन सुरक्षित ईंधन को उपयोग करण हेतु जागरूक करे है योजना और ग्रामीण क्षेत्र तक गैस वितरण नेटवर्क को विस्तार ई योजना के मार्फत हुआ करे है। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में प्रोत्साहन देनु और महिला के जीवन में परिवर्तन लानु इको मुख्य विशेषता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सब बड़ो लाभ महिलाएं मिले है कि पहला महिला ने खानू बनाने में घंटों लागिया करतो। आपा जाना हाँ कि मतलब धुआं मतलब रसोई में काम करता करता वजह कठिन हुआ करतो है। आपा पहला देखता कि पूरी रसोई की रसोई पूरी काली की काली रहती जहां आपा गांव में रसोईया देखता तो बामो जको वो धुआं निकलतो तो रसोई पूरी काली हो जाती। तो भी के तहत ई योजना में गैस कनेक्शन मिलने के बाद खानू भी जल्दी बनवा लाग गयो और महिला को खानू बनाने में समय भी बचने लाग गयो। और सब जिकी बड़ी चीज है जिकी मैं तुम बताई कि स्वास्थ्य में सुधार हुई है। देखो सा कि पहला सुख निरोगी काया तो आपने अगर घर की महिला अगर सुरक्षित रही हर भी को अगर स्वास्थ्य अगर चौको रेसी जना पच ई योजना को हूं साकार है। और देखो सा इस घर को वातावरण भी स्वच्छ हुए है क्योंकि जहां धुआं उतो तो भी वो आपने जहां घर को थोड़ा वातावरण भी हो वो भी थोड़ा प्रदूषित रहते पर्यावरण प्रदूषण हो जाते। और देखो महिलाओं का सम्मान और आत्मविश्वास ई योजना के तहत बढ़े है। आज लाखों महिलाएं ई योजना में आपको जीवन महत्वपूर्ण बदलाव माने हैं और ई योजना का बहुत ही ज्यादा आपने स्वास्थ्य पर बाके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े है। अब आप बात करा कि उज्ज्वला योजना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं पड़े है तो देखो सा एलपीजी गैस के उपयोग से धुआं में कमी आई फेफड़ा की बीमारियां दूर हुई आंखिया की जिकी समस्या होती जहां धुआं बढ़तो तो बढ़ीता हूं वह आंखिया के माए बाकी धुआं जातो तो बी की भी समस्या घटी है और बाकी आंखिया भी सकीट बढ़िया है। और देखो बच्चा और बुजुर्ग जका मन भी स्वच्छ वातावरण मिले है क्योंकि बच्चा और बुजुर्ग की जिकी इम्यून सिस्टम हुए वो थोड़ा कमजोर हुआ करे है। और देखो महिलाओं की

कार्य क्षमता ई योजना सु बड़ी है। बात करा अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञ की बात माना तो स्वच्छ ईंधन को उपयोग एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब ई योजना को पर्यावरण संरक्षण में कई योगदान रही है। दिन अगर आप देखा तो उज्ज्वला योजना जिसकी स्वास्थ्य सुधार तक ही सीमित कोनी है बल्कि आप पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दियो है। लकड़ी की खपत कम होने से आपने जिकी पेड़ा की जिकी कटाई होती बा भी कम हुई है। आपने जगह जंगल है वन है वन भी संरक्षण मिले है। कार्बन उत्सर्जन घटे है और वायु प्रदूषण कम हुए है। इस प्रकार से आ योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास में इको

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ग्रामीण विकास में इको योगदान है। बीकी अगर आप बात करा तो ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधा ई योजना के तहत पहुंची है और महिलाओं को समय बचना के साथ साथ बामे रोजगार को नया अवसर मिलो, क्योंकि गैस एजेंसियों को इनमें विस्तार हुए है। तो देखो सा, आज आप बात करी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की और ई कैसा गई किसान भैया था भाई विशाल गौड़ ने दिया आज्ञा और चला और करा राम राम सा।

0: सभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमेर चैनल है एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है।

0: और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50 से 90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निःशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप।
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और

0: सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह शब्द सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है,
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास चार पांच स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पर इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर

0: पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
1: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
0: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
0: जी,
1: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है, तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
0: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक है उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है, राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के

0: फीस को 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमने किया है, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सके और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत
1: दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत

0: बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है, तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेलकूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि

0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on EIR. This program is also available on our YouTube channel News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हमें श्रोता सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला हमारे दिल्ली केंद्र से आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफको राजस्थान।
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। गवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो DAP का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
3: खेतीबाड़ी सुन वाला सगला कास्तकार भाई विशाल गोड़ का घना घना राम राम सा, खम्मा घनी सा। और देखो किसान भैया, आज तारीख है 7 जून, और आज के दिन आपा मनावा हां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जको आपा हर साल 7 तारीख ने मनाया कर। देखो आजकल रो जमानो एड़ो है कि हर कोई जल्दी में, कोई फास्ट फूड खावे तो कोई बारे को खानो खावे, लेकिन एक सोचने वाली बात आ ऐसा, जको आपा खानो खावा हां कहीं वो साफ है, कहीं वो सुरक्षित है, क्योंकि भोजन पेट भरना की चीज ही को नहीं है, एक ऐसा कैसा का जीवन बचाने की भी बहुत बड़ी चीज है। अगर देखो किसान भाई, अगर आपा अगर चोको खानो नहीं खावाला तो आपा में बहुत सारी बीमारियां लग सके, जी हाँ, पेट खराब हो सके है, उल्टी दस्त हो सके है, फूड पॉइजनिंग हो सके है, और कई प्रकार का गंभीर बीमारियां हो सके है। आपनो जको WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो भी का आंकड़ा के अनुसार हर साल लाखों लोग साफ सुथरा खानो नहीं खानो, असुरक्षित भोजन करनो बीमार पड़ जावे। तो अब आप बात करें

0: कि सुरक्षित भोजन को काई मतलब हुए, जको साफ जगह बनेड़ो रहे, जकाम कोई प्रकार की मिलावट ना हुए, सही तरीका धोर पकार बनावे और जकान आपा ढक रखा बिन आपा सुरक्षित भोजन कया कर। और देखो आपा अपनी जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर बहुत बड़ो बदलाव कर सका। जी हाँ, आपा बाजारों सब्जी लाबा जावा तो सब्जी ले रहा हुआ तो सब्जी और फलन अच्छी तरह धोर बान खाना चाहिए, खानू हमेशा ढक राखनी चाहिए, क्योंकि आपा देखा कि घर का मायन माखी मच्छर उड़ता रहे तो बे भी खाना के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, और हमेशा खानू हाथ धोर बनानी चाहिए और हाथ धोर ही खानू जीवनी चाहिए। और सब अपन विशेष रूप ध्यान रखनो कि बस ही खानू अपन नहीं खानू चाहिए, जहां कोई खानू पुरानो हुए तो बिन अपन नहीं खानो चीजें। और अब बात करें खाना कसा कसा का, अपन साफ पानी पीनो चीजें। तो किसान भाई आजकल रो जको जमानो है भी जमाना में अपन बारे को खानो सेम पसंद है, पर थोड़ो सो अपन ध्यान रखने की भी जरूरत है। जी हाँ, अपन ने खुली जगह रो खानो नहीं खानो है, साफ दुकान में अपन खानो लेनो चीजें है। आजकल जी कई चीजें डब्बा बंद हुए, कई चीजें मतलब ये चिप्स वगैरह बिस्कुट वगैरह ऐ भी अगर आप लेवा अन अगर खावा तो आकी अपन एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चीजें, बाकी ऊपर देखनी चीजें कि एक्सपायर नहीं रहना चीजें है। अपन ज्यादा फास्ट फूड खानो बचनी चीजें। और देखो किसान भाई, आप जत्ता खेत खलियान जुड़ेड़ा रहवाला बतो अपने जीवन में बढ़िया रहे वालो। और खाद्य सुरक्षा सिर्फ थाली तक ही सीमित को नहीं है, वो तो आपने खेतों शुरू जावे। किसान जब सही तरीका फसल उगावे, सही खाद पानी को उपयोग करे, जब ही अपन साफ सुथरो भोजन आपने पुगे। अब ये चीज में अपन खुद तो ही सीमित न रहकर इन समाज में भी इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर हर आदमी ये चीज जागरूक हो जाए तो देखो बीमारियां भी कम हो जैसी, और बच्चा की जगह सेहत है आपने जगह टाबर टोली जितना भी है बाकी सेहत भी सुधर जाई है, अस्पताल को बोझ घट जैसी। जी हाँ, आप देखा कि अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का है, कई प्रकार का भांत भांत का मरीज ये चीज आवे, तो अगर आप चोको खानो खासा तो बी के ऊपर भी अस्पताल पर बोझ कौन पड़े। और देखो अगर आपनो समाज और आपना जितना भी गांव ढाणी में आप लोगों ने अगर बताशा तो जिस वो भी इस चीज को ध्यान रखेंगा। और बाकी अगर है ना कि स्वस्थ भोजन मतलब स्वस्थ जीवन। अब आप बात करा तो आपनी सरकार है और कई संस्था है जिकी इके लिए काम भी करया करे, जी FSSAI खाद्य सुरक्षा संस्था आ मतलब जका बारे जका बेचा करे खाने वगैरह आका ऊपर बने नियंत्रित करा। और जी कई प्रकार का सरकार जागरूकता अभियान भी चलावे है, हर कई कई बार आपा देखा जांच अभियान चले जाबे हर जगह जार जांच भी करया करे, और कई प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया करे। तो आज देखो सा आपा जाने कि खाद्य सुरक्षा केवल एक ही दिन को विषय को नहीं है, क्योंकि आपा रोटी रोजी ना खावा भोजन रोजी ना करा तो आपन इस चीज के ऊपर विशेष रूप ध्यान रखनो है कि आ तो हर दिन की जरूरत है। तो आज आपन एक ही संकल्प लेनो है कि साफ सुथरो भोजन खावांगा, दूसरा ने भी जागरूक करांगा और सेहत रो ध्यान रखांगा। अगर आपा सभी लोग स्वस्थ रहवाला यदि आपा एक अच्छा भविष्य रो निर्माण कर सकला। अब देखो सा घड़ी री सुइयां इशारो कर रही है, कार्यक्रम ने अब आपा बढ़ावा आगे और पवन कुमार जी लेवा फूलों की व्यवसायिक खेती के बारे में जानकारी, तो लेवा सा जानकारी।
1: श्रोतावा कार्यक्रम में आज आपने सागे है पवन कुमार जी, जिका सु आज आपा जानकारी लेवाला फूला रे व्यवसायिक खेती विषय पर। सबसे पहले तो पवन जी आप घणो घणो स्वागत है, राम राम सा।
2: राम राम जी।
1: तो सा जिया की आज आपनो विषय है फूला री व्यवसायिक खेती, तो फूला री व्यवसायिक खेती काय हुए है ई विषय पर पहली जानकारी दियो सर।
2: जी, फूलों की व्यवसायिक खेती को अपन साइंटिफिक टर्म में फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सारे ही फूलों जिसमें जो मार्केट में बिकने वाले पौधों से लेके फ्लावर से

0: किस्म की आर्टिफिशियल जितने बुकेज बनते हैं, जिन भी गार्लैंड जिनको बोलते हैं, मालाएं बनती हैं, उन सब का कॉमन जो टर्म आती है वो फ्लोरिकल्चर बोली जाती है। अब फूलों में क्या मैम, आजकल जो व्यवसाय है भी प्रेजेंट टाइम में, ये इंटरनेशनल लेवल और इंडिया लेवल के ऊपर काफी अच्छा स्कोप आता जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक खेती जो चलती आई है उनको छोड़ के लोग अभी फ्लोरिकल्चर की तरफ ज्यादा रुझान ला रहे हैं।
1: जी
0: ऐसा ही कुछ राजस्थान के किसान भी कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में पानी की समस्या के कारण किसान बारिश के पानी से ही खेती करते हैं।
1: जी
0: पूर्व के समय से ही होती आ रही इस पारंपरिक खेती को छोड़कर युवा अब नई जो तरीके हैं उनको अपना रहे हैं, जिससे लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। किसान अगर तकनीकी के से खेतों में फूलों की खेती करेगा तो वर्ष भर में काफी मुनाफा कमा सकते हैं।
1: जी बहुत ही बढ़िया सा, आप एक नई दिशा अपने सगला किसाना के सामने रखना चाह रहे हो। अब अगर आप बात करा जी, आप कहे हो कि राजस्थान में भी फूला की व्यवसायिक खेती प्रचलन में आ रही है, तो वह कौन कौन सा प्रजाति का फूल है जिका की अठे खेती के रूप में कराया जावे है?
0: जी अभी राजस्थान में मुख्यतः अपन गुलाब की खेती करते हैं।
1: जी
0: उसके साथ साथ जैसे गेंदा है, लिली एक फ्लावर आता है जो अब इंडिया में कम होता है, जो हिली एरिया जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ ज्यादा होता है।
1: जी
0: साथ में रजनीगंधा जिसको ट्यूबरोज बोलते हैं, एक फ्लावर होता है ग्लेडियोलस।
1: जी
0: ये सारे पौधे आजकल अपने राजस्थान में उगाए जा रहे हैं।
1: जी तो सर आप जी यहाँ बार बात करी कि बहुत सारा फूल है जिका की खेती व्यवसाय के रूप में राजस्थान में हो रही है, तो आप आज आपने विषय के रूप में मुख्य रूप से गेंदे की अगर बात करा तो गेंदे रू जी को फूल है बिकॉज सामान्य परिचय आप दियो सर।
0: जी जी गेंदा क्या है कि गेंदा मैम हर एक उस प्रोग्राम के ऊपर या धार्मिक जो है पर्व है उनके ऊपर यूज किया जा रहा है, साथ में ही जैसे शादी में, ब्याह में, जन्मदिन पर, इन सब सरकारी आयोजनों में, इन सब में गेंदे का काफी उपयोग किया जा रहा है।
1: जी
0: साथ में जैसे गेंदा है तो गेंदे के फूल को अपन मुर्गी फार्म जो आजकल है पोल्ट्री फार्म उसके अंदर उनकी फीडिंग के लिए काम में लेते हैं। क्या इससे क्या होता है, जो अंडा होता है उसके अंदर का जो पीला वाला भाग होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसमें कलर बढ़ता है जो कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है।
1: जी
0: तो ऐसे गेंदे का काफी उपयोग किया जा रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में।
1: पवन जी जब आप गुणारी बात कर रहा तो गेंदे रे फूल रो औषधीय गुण भी मान्यो जावे है, तो वो काई है वो भी बताओ सर।
0: जी गेंदे में मैडम बहुत सारे औषधीय गुण है, जैसे बच्चों में या बुजुर्ग में या किसी में भी कान के अंदर जो दर्द होता है उसके अंदर गेंदे की पत्तियों के रस को डालने से, पत्तियों को अगर अपन निचोड़ेंगे तो उनमें से जो पानी निकलता है उसको अगर कान में डालते हैं तो वो दर्द को कम करता है। साथ में जैसे जितने भी चर्म रोग, चमड़ी के ऊपर जितने भी दाद, खुजली टाइप जो भी बीमारी होती है उनके रोकथाम के लिए भी गेंदे की पत्तियां काम में आती हैं। साथ में जितनी भी अंदरूनी चोट है, हड्डियों पे लगी हुई मोच है, उनमें भी गेंदे की पत्तियों की मालिश करते हैं तो आराम मिलता है। साथ में ताजे फूलों का रस जो होता है उससे भी जो इंटरनल डिजीज है, जितनी भी पेट में दिक्कत है, उन सब को भी आराम मिलता है।
1: जी
0: साथ में फूलों का जो अर्क होता है, जो जिसमें अपन हनी जिसको बोलते हैं, उसका सेवन करने से जो खून में जितनी भी डिजीज है वो भी खून साफ होता है। साथ में जो साधारण कहीं भी कट लग गए आपके शरीर पे किसी भी चीज से, तो उसके अंदर इसकी पत्तियों को मलकर, मतलब पीसकर और उसका लेप करने से भी आराम मिलता है।
1: जी बहुत बढ़िया सा आप ये बात बता रहे हो, लेकिन कोई भी प्रकार की जी की कार्यवाही है बात करने से पहले एक बार चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता आप श्रोताओं ने कहा कि जरूर ले लेनी चाहिए। अब से आप बात करा कि गेंदा की खेती के लिए वह कौन सी प्रकार की भूमि है जी की आवश्यकता पड़े है, और आप वो भी बताओ कि भूमि की आप भी की तैयारी किया करा वो भी विस्तार पूर्वक सगले श्रोताओं तक पुगाओ सर।
0: गेंदे की खेती अपनी जो बलुई दोमट, जो दोमट मिट्टी कहते हैं जिसको, बिल्कुल काली वाली मिट्टी नहीं, जिसमें भुरभुरी जो मिट्टी होती है जिसमें पानी आराम से अगर डालते हैं तो लीचिंग आउट जमीन के अंदर चला जाता है, वैसी वाली मिट्टी परफेक्ट रहती है। जैसे इसको इन साइंटिफिक टर्म में बोले जैसे दोमट मिट्टी, मटियार दोमट, बलुई दोमट।
1: जी
0: पर सबसे अच्छी जो होती है वो बलुई दोमट होती है, जो राजस्थान के 90% एरियाज में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है।
1: जी
0: अब जैसे इसके आगे बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो जैसे 200 क्विंटल के आसपास जो कंपोस्ट खाद होती है, एक होती वर्मी कंपोस्ट होती है, एक नॉर्मल कंपोस्ट सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है, उसको अगर अपन जमीन पे डाल के एक हेक्टेयर में उसके ऊपर 2 या 3 बार कल्टीवेटर से उसकी जुताई करेंगे तो, और उसको फिर उसके ऊपर पट्टा जो होता है जिसको अपन बोलते हैं लेवलर, वो लेवलर चला के उस मिट्टी को भुरभुरा करके इसकी तैयारी की जाती है इसकी क्रॉपिंग के लिए।
1: जी तो सा या तो बात हुई कि आपा अपनो खेत है बिना आपा क्या तैयार करा, एक अलावा आप यो भी जानना चाहवाला कि गेंदो कितने प्रकार को हुए है और व्यवसायिक की जी की किस्म हुए है वह कौन कौन सी हुए है?
0: जी गेंदा मैडम 2 प्रकार का होता है।

0: साइंटिफिकली टू टर्म बोलते हैं इसको, जैसे अफ्रीकन गेंदा होता है एक फ्रेंच गेंदा होता है, इनमें मेन मेन डिफरेंस इनकी हाइट और फूल की जो साइज है उसको देखते हुए डिफरेंस किया जाता है। जैसे अफ्रीकन गेंदा जो है वो 1 मीटर तक की हाइट का होता है, इसमें भी 2-3 वैरायटीज अलग अलग होती हैं जो बोनी होती है, जैसे 30 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं 1 फीट के आसपास की हाइट की भी इसमें काफी सारी वैरायटी हैं। जैसे अफ्रीकन गेंदा है उसमें खास तौर पर ये होते हैं कि ये गोलाकार होते हैं, मतलब उनके फूल जो होता है एकदम बिल्कुल राउंड शेप में बॉल की तरह होता है
1: जी।
0: इसकी मेन जो वैरायटी है अफ्रीकन गेंदे की वो है जैसे पुसा नारंगी, जो अब मार्केट में कॉमनली मिल जाती है इसकी सीड और आपको सीडलिंग जिनको छोटे पौधे बोलते हैं सीडलिंग, वो दोनों आराम से मिल जाती है। उसके अलावा जैसे पुसा बसंती है, अफ्रीकन येलो, ये 2-3 वैरायटीज हैं ये जो कॉमन मार्केट में आपको मिल जाएंगी। जैसे अपन फ्रेंच गेंदे की बात करेंगे, फ्रेंच गेंदा है जो है उसकी 25 से 30 सेंटीमीटर हाइट होती है और इसमें क्या होता है कि शाखाएं ज्यादा नहीं होती हैं। जो अफ्रीकन गेंदा होता है वो फैला हुआ होता है, लेकिन फ्रेंच गेंदा छोटा और कम शाखाओं वाला होता है, लेकिन इसमें फूल ज्यादा होते हैं फ्रेंच गेंदे में
1: जी,
0: मतलब एक टाइम में ये पूरा एकदम फूलों से ढक जाता है। इसकी 2-3 वैरायटी है फ्रेंच गेंदे की, जैसे है एक तो रेड ब्रोकेड है, बोलेरो वैरायटी है, एक बटर स्कॉच है। ये जो बटर स्कॉच है ये आपको नॉर्मल अपने जैसे जयपुर के क्षेत्र में आप कहीं भी सीड भी मिल जाएंगे और उसके छोटी छोटी सीडलिंग्स भी मिल जाएंगी
1: जी। वासावा तो आप बहुत ही बढ़िया बात बताइए। अब आगे आप सुनिए वो जानना चावल है कि कोई भी खेती की जिकी नींव हुए है खाद और उर्वरक पर निर्भर करे है, तो खाद और उर्वरक की जिकी आवश्यकता है बा कितनी हुए है और इमें जिकी सिंचाई की आवश्यकता हुए है बा क्या करनी चाहे कब करनी चाहे वो भी बताओ सर
0: जी। जी गेंदे में अपन मैंने पहले बताया था जैसे अपन खेत तैयार करते
2: आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 8 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में गामना सोरा माते आवेला सब किसन भैया ने बोनो ने शंकर भाई नु राम राम। किसान भाइयों देखो अपने खेतर अपना खाली पड़े थे कहे किसान भाई ये गर्मी ने गहरी जुताई भी करी होगा ने सामान्य जुताई है ये भी कर दी होगा क्योंकि अभी नवी फसल ने बुवाई नो समय अबारो है ने कुछ किसान भाई जो है ये मक्का करेंगा ने सोयाबीन भी करेंगा तो सोयाबीन जो है सोयाबीन में कुछ प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिनमें JS 95-60 अच्छी उपज है रोगों ने प्रति अपेक्षाकृत सहनशील है। एक आवे JS 20-29 आनी उत्पादन क्षमता वधारे रहे ने एक आवे है JS 20-34 आज जल्दी पाकवा वारी है ने अच्छी पैदावार आलोवारी किस्म है एमनेम RVS 2001-4 आ सूखा सहनशील ने अच्छी उपज ने वास्ते प्रसिद्ध है। एक आवे NRC आ रोग प्रतिरोधी ने उच्च उत्पादन क्षमता वाली है। एक आवे MSCS 1407 आ पीला मोजेक रोग ने प्रति बेहतर सहनशील रहे तो आ सोयाबीन नी आ प्रमुख जो है ये उन्नत किस्में हैं ने सोयाबीन ने में इन्हें हाथे हाथे आपने कीट नियंत्रण सोयाबीन ना जो प्रमुख कीट हैं इन्ना प्रबंधन भी आपने करवो पड़ेगा। सोयाबीन में जो फसल है इन्हें कई प्रकार ना कीट जो हैं ये नुकसान पहुंचावे जिनमें सफेद मक्खी ने जो वयस्क ने नीमक सोयाबीन की पत्ती ने निचली सतह में तरे ने वही अवस्था ने में आ सोयाबीन की पत्ती ने में रस चूसी ने नुकसान पहुंचावे। एवं एवं रीति एक हरा तेला आज एक कीट है आना भी वयस्क ने नीमक पत्ती ने निचली सतह में ते समूह में रहे ने ई पत्ती ने रस चूसी ने पौधा ने नुकसान पहुंचावे। एक आवे

बिहारी रोमदार सुंडी आ भी एक बहुभक्षी कीट है ने आना कीट ने जे मादाए हैं ये सोयाबीन की पत्ती ने निचली सतह माते अंडा आले ने अंडा थकी सुंडी निकरवाने बाद पत्ती ने निचली सतह ने खावू चालू कर दे। इन्हें अलावा चक्रभंग करीने आवे ई वयस्क आनो मादा जे है ई तना ने माते बे समानांतर चक्र बनावे ने निचला चक्र ने कुछ ऊपर तीन छेद बनावे तो आज है कि तना ने अंदर सुंडी ऊपर ने नेसे अड़ी खातो जाए ने तनो जो है ई खोखलो थी जाए। इनने में तना मक्खी करी ने आवे है आज ये मक्खी है ई पत्ती ने जब ऊतक रही इनने में प्रवेश करी ने अगड़ी बढ़े ने पत्ती ने मध्य शीरा तक पोसी जाए ने अंत में पत्ती ने डंठल ने माध्यम थकी तनाने में प्रवेश करे। एक आवे अर्धकुंडलक अर्धकुंडलक जे है एनो आक्रमण सोयाबीन नी फसल ना जे पत्ता रही ये करी था ने एनी जे सुंडी है ई शरीर ने माते तीन जोड़ी प्रोलेग इन माते रहे ने आज कीट है इनी सुंडी अगाड़ी आड़ी गति करे ने चक्र बनावे जे आनो प्रमुख लक्षण है। एक आवे तंबाकू सुंडी जिनी मादा जे है ई पौधने माते अंडा आले जे बाल जेवा रेशा थकी ढाकेला रहे ने अंडा थकी निकरवाने बाद एनी जे सुंडी जे झुंड ने रूप में एक हाथे पत्ती ने खाए। तो आवी रीति आ अना कीट जे हैं इन्नो प्रबंधन करवो जरूरी है। सोयाबीन में कीट ने नियंत्रण ने वास्ते खेतर ने में ग्रीष्म काल में गहरी जुताई करी ने जल्दी बुवाई करवा थकी कीटों नो प्रकोप जे है ये कम थाय। सोयाबीन नी फसल ने चारे आड़ी प्रपंच फसल जिम के अरंडी नी फसल है आदि नी बुवाई करवी जुए ने इन मते अगर लागेला कीट है अंडा है तो इन्हें नष्ट कर देवा जुए। प्रकाश पोष ने फोरोमेन ट्रैप नो भी उपयोग करी शका ने इन्हें थकी भी आपने तितलियां ने इकट्ठा करी ने नष्ट करी शका ने चिड़िया नो बेवा हरू खेतर ने में टी आकार नी आपने खरपच्ची लगाड़ी शका जिनते की सुंडियों नी संख्या जो है इन्हें आना तरीका थकी कम करी शका। सफेद मक्खी ने हरा तेला जो है इन्हें वास्ते 150 मिली लीटर इमिडाक्लोप्रिड 7.8 SL प्रति हेक्टेयर नी दर्द की छिड़काव करो जुए ने 12-15 नग प्रति हेक्टेयर पीला चिपचिपा पाश आपने लगाड़ो जुए। जैविक नियंत्रण ने वास्ते आपने ट्राइकोग्रामा कार्ड लेडी वर्ड बीटल ने एनपीवी ने बीटी ने कीटों ने रोग उत्पन्न करवा वाली फफूंद जिम के न्यूमेरिया रिलई ने नीम की पत्ती है ने निम्बोली नो रस नो उपयोग करी ने सोयाबीन ने फसल ने में कीट नो नियंत्रण आपे करी शका। इन्हें अलावा चक्रभंग अर्धकुंडलक तंबाकू सुंडी चनानी फली छेदक अन्य नियंत्रण हारू ट्राइजोफास 40 EC 1.25 लीटर या प्रोफेनोफास 50 EC 1.25 लीटर नो 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर ने दर्द की छिड़काव करीने नियंत्रण करी शक। सोयाबीन ने फसल में कीटों नो अधिक प्रकोप थाई जाए तो सुंडियों ने नियंत्रण ने वास्ते क्लोर एंथ्रा निलीप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर ने दर्द की छिड़काव करी शक। किसान भाइयों सोयाबीन ने खेती नी तैयारी करी रहता कहा तो सोयाबीन ना जे बीज है उन्नत किस्म ना लावी ने बुवाई करी ने सोयाबीन नी अच्छी फसल किसान भाई इनी अच्छी देखरेख करी नी कीटा तक की बचावी नी करी सके। किसान भाइयों कुछ संदेश आवेला है ई आपड़े हमरा ने हाते हाते आपड़े एक बढ़िया सु भजन हमरा

0: प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे मत कर।

किसान भाइयों, आपणे वात करी रहता सोयाबीननी, ने हवे आपणे वात करा कि जैविक खेती जे है इने आड़ी आपण जावू जोईए, आपणे खेतने आपणे बचावा जोईए। जैविक खेतीना घणा फायदा है, एमथी कि मिट्टीनी उर्वरा शक्ति जे है ए वधी जाय, ने जैविक खाद गोबर खाद कम्पोस्टना उपयोग थकी मिट्टीनी जे संरचना है एने उपजाऊ शक्ति है ए बेहतर थाय, उत्पादन जे है एनी लागत कम आवे, रासायनिक उर्वरक ने कीटनाशक ने माते निर्भरता आपड़ी कम थायगा, स्वास्थ्य ने वास्ते अच्छी रहे। जैविक फसलें जे हैं इनमें रासायनिक अवशेष कम रहे, जिन थे कि जे मानव है आपड़े एने वास्ते अपेक्षाकृत सुरक्षित भोजन आपने मिले, जिनमें पौष्टिक तत्व भी रहे, हाथे हाथे पर्यावरण नो संरक्षण भी थाय, मिट्टी जल ने वायु प्रदूषण इनमें कम थाय, ने जैव विविधता ने अंत की बढ़ावो मिले। मिट्टी ने मई जल धारण करवानी क्षमता है ई बढ़ी जाए, जैविक पदार्थ बढ़वा थे की मिट्टी जे है ई अधिक नमी संचित करीने राखी शके, लंबा समय तक टिकाऊ खेती करी शके, भूमि नी जे उत्पादकता है ई भी लंबा समय तक बनी ली रहे, ने बजार ने में अपने व्यावसायिक दृष्टि थकी

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 8:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उत्कृष्ट की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैंप प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों में जो खास खबरें रखी हैं उनके बारे में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो जो आज की हेडलाइंस है उन पर नजर डालते हैं। अलेक्जेंडर ज़वरेव और फ्लेवियो कोबोली के बीच फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स फाइनल जारी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। भारत ने उलान बटोर ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल खिताब जीता। फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से पराजित किया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पकड़ और मजबूत की। पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 451 रन आगे। और संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण का देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजन। खेल, सिनेमा और राजनीति की दिग्गज हस्तियां शामिल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ज़वरेव अपने करियर का 4था और कोबोली अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक ज़वरेव ने पहला सेट 6-1 से जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चवालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में माया चवालिंस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसी के साथ 8वीं वरीयता प्राप्त रूस की खिलाड़ी साल 1992 में मोनिका सेलेस के लगातार 3रा खिताब जीतने के बाद से पेरिस में सबसे युवा महिला सिंगल्स चैंपियन बन गई हैं। स्टेड रोलैंड गैरोस ने 1 घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में इस युवा खिलाड़ी ने 6-3, 6-2 से बाजी मारी। एंड्रीवा ने पूरे खेल में शानदार संयम दिखाया जो उनके खेल की पहचान बन गया। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। कड़े मुकाबले वाले शुरुआती सेट से आगे बढ़कर उन्होंने 6-3, 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने युवा करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता और फ्रेंच ओपन के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जीत के बाद एंड्रीवा ने कहा कि इस टूर्नामेंट को जीतना हमेशा से उनका सपना रहा है।
3: Congrats to Maya for these amazing 3 weeks, passing through qualis, winning so many matches, beating so many great players. Congrats to your team as well. You're a very tricky opponent. I wouldn't want to play against you one more time. So I wish you the best of luck for the rest of the season and hope you play many, many more finals together in the future. I want to thank myself for believing in myself, always giving my 100%, even when it's tough.
2: जीत के बाद भावुक एंड्रीवा जश्न में कोर्ट पर गिर पड़ी और फिर अपनी कोच कोंचिता मार्टिनेज को गले लगाया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 और 1994 की विंबलडन चैंपियन मार्टिनेज ने एंड्रीवा के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात करते हैं कुश्ती की। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के ओसिम जान दस्तानबेक और विक्की ने 97 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के गंगख्यान गनबटेर को हराकर कांस्य पदक

0: अपने नाम किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत ने 7 वर्ष बाद सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। गोवा के मडगांव में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार इस खिताब पर कब्जा किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
1: भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने आत्मविश्वास से भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को खेल के हर मोर्चे पर शिकस्त दी। मैच के 42वें मिनट में प्यारी खाखा ने पहला गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के अंतिम क्षणों में बांग्लादेश की ऋतुपूर्णा चकमा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के शुरू होने के सिर्फ 40 सेकंड ही हुए थे कि भारत की सनफीदा नोंगरम ने ब्लू टाइग्रेस को फिर से बढ़त पर ला दिया। इसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिंडा कॉम सर्टो ने 82वें मिनट में गोल करके मेजबान भारत की जीत पक्की कर दी। इसके बाद जैसे ही खेल समाप्ति की सीटी बजी, भारतीय टीम और उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। पूरे टूर्नामेंट में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सनफीदा नोंगरम घुटनों के बल बैठ गई और अपनी साथी खिलाड़ी डैमी ग्रेस को गले लगाया, जिन्होंने मैच के बाद संन्यास की घोषणा की। साल 2013 में अपने करियर की शुरुआत के बाद से भारतीय महिला फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी ग्रेस ने 95 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और अपना 3रा सैफ खिताब जीतकर शानदार अंदाज में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। यह जीत मेजबान टीम के लिए एक शानदार अभियान का समापन थी, जिसने अपने 4 मैच जीते। इस दौरान 18 गोल किए। अविका सिंह 4 गोल के साथ प्रतियोगिता की शीर्ष स्कोरर रही। सनफीदा नोंगरम को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जबकि पंथोई चानू इलांगबम को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। नेपाल की टीम ने फेयर प्ले पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई नेताओं तथा खेल प्रेमियों ने भारतीय महिला टीम को एक ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और श्रोताओं, फुटबॉल के बाद अब आप लोग ले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान में। न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया। यह उनके करियर का 4था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले कल शैली सिंह ने लंबी कूद और महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
2: न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जीत का सिलसिला जारी है। भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ नया मीट रिकॉर्ड भी बना लिया है। श्रावणी नंदा, एसएस नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की टीम ने ताइवान के बानकियाओ स्टेडियम में शानदार 44.07 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा जमाया। इस दौरान भारतीय टीम ने पिछला मीट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिले में जीत के अलावा लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। शैली ने 6.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया और अपने प्रतियोगी से आगे रही। उन्होंने मीट में भारत की पदक तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। भारत के तेजस सिरसे ने भी ट्रैक पर प्रभावित किया और पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता। इससे पहले भारतीय वुमेन्स रिले टीम ने भी अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां भारत रिकॉर्ड 19 मेडल जीते थे। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान पर पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में अफगानिस्तान ने आज 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। तो सुनते हैं मैच के दूसरे दिन का हाल।
3: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी मेजबान भारत के नाम रहा। भारत ने अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को दिन का पहला झटका अपना शतक पूरा कर चुके कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो 177 गेंद में

0: 26 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने भी 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली, जबकि वाशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी। इससे पहले मैच के पहले दिन केएल राहुल ने शानदार 100 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने 6 विकेट जबकि जियाउर रहमान और हशमतुल्लाह साहिदी ने 1-1 विकेट लिया। इसके बाद भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अभी भी भारत से 451 रन पीछे है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात रविवार के दिन साइकिल पर फिटनेस की सवारी की। आज देश भर के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल के आयोजन में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर फिट रहने का संदेश दिया।
2: विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में किया गया। इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, अभिनेता विक्रांत मैसी, मुक्केबाज नुपुर शोराण और एक्टर मॉडल रागनी द्विवेदी शामिल हुई, जिन्होंने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज संडे ऑन साइकिल का 77वां संस्करण है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एक पहल से शुरू हुई यह मुहिम आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।
3: संडे ऑन साइकिल का आज 77 एडिशन है। जो पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी, आज देश में 10,000 स्थान पर हुई है। देश के नागरिकों को एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आसानी से उपलब्ध होती है और कई समस्या का समाधान हो? ये साइकिल है। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप मेंटली फिट रहते हैं, फ्यूल का बचत होता है, प्लेनेट शुद्ध रहती है। तो इतनी सारी चीजें एक साइकिलिंग करने से समाधान देती है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें।
2: फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि रविवार की यह सुबह उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद दिला गई। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों का फिट रहना बेहद आवश्यक है।
4: 1.5 साल से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है संडे से साइकिल का, हर हफ्ते होता है, कई शहरों में होता है। आज के दिन अगर आप पूछे तो कम से कम 400 शहरों में चल रहा है। तो देखिए, सेहत के बारे में सब जानते हैं कि रियल सक्सेस इज गुड हेल्थ, और सक्सेस के महीने बदलते रहते हैं, पर ये एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलेगी। प्लीज फिट रहें, और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे।
2: इस अवसर पर मुक्केबाज नुपुर शोराण ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। नुपुर ने कहा कि सभी लोगों को अच्छी सेहत के लिए समय निकालकर 10 से 15 मिनट साइकिल जरूर चलानी चाहिए।
5: संडे ऑन साइकिल जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और जो मैंने आज वहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, उससे पता चलता है कि लोग कितने जागरूक हैं आज के टाइम पे फिजिकल फिटनेस के लिए। और साइकिलिंग तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज है, फिजिकली फिट रहते हैं और मेंटली भी बहुत पीस मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालनी चाहिए साइकिलिंग के लिए।
2: दिल्ली के अलावा मुंबई, भोपाल, जम्मू और बीकानेर में भी लोगों ने सुबह साइकिल की सवारी करते हुए फिटनेस का संदेश दिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चर्चा योगासन की। गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है कि सबसे अधिक पदक जीतकर भारत तालिका में शीर्ष पर है।
6: पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने कुल 30 मेडल जीतकर मेडल टैली में अपना दबदबा बनाए रखा है। इसमें कुल 24 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जबकि सिंगापुर 6 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। योग में जबरदस्त स्किल, डिसिप्लिन और बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय योगा खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया और इस खेल में ग्लोबल लीडर के तौर पर देश का रुतबा मजबूत किया। इस चैंपियनशिप में 75 देशों के 500 से अधिक योगा खिलाड़ियों हिस्सा ले रहे हैं। 4 जून से शुरू हुए इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप का कल आखिरी दिन है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 254 रन का लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर ही सिमट गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रुक के 56

0: रन की पारी के बावजूद पहली पारी में 140 रन बना सकी थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड पहली पारी में 113 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त मिली थी और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एमिलो गे के 57 रन की मदद से 256 रन बनाए थे। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स फाइनल खेला जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव और इटली के फेवियो कुबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। तो श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्पोर्ट्स स्कैन इसी तरह आप सुनते रहें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो sportscan@aar.gmail.com पर भेजें। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियों, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियो उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियों, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें डालकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद

0: बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत टीम ने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नम्बर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीति

0: नीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सुफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहाँ परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवीजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे

0: बजे।
1: साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आगाज करते हैं लता मंगेशकर की गायक फिल्म इंतकाम के इस गीत के साथ। शब्द लेखन राजेंद्र कृष्णा का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म इंतकाम में सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले का गाया फिल्म लूटमार का ये गीत। शब्द लिखा अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

आपने आशा भोसले को फिल्म लूटमार में सुना। आइए सुनते हैं साहिल उद्यानवी की रचना को रवि के संगीत निर्देशन में फिल्म अमानत से। इस गीत को आवाज़ दिया मोहम्मद रफी ने।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

गाने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को फिल्म बदलते रिश्ते में सुना। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म हमसाया का ये गीत। शब्द लेखन शिवान, रिसी का है संगीत ओपी नैयर का।

आइए सुनते लता मंगेशकर का गाया फिल्म आरजू का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म आरजू में सुना और यह सुनते आनंद बख्शी की रचना को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दादा से। इस गीत को आवाज दी है यीशुदास ने।

अभी आपने येसुदास को फिल्म दादा में सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया फिल्म लव स्टोरी का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा है गीत है संगीत आर डी बर्मन का।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अभी आपने फिल्म हकीकत का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया फिल्म हीरो का ये गीत। आनंद बख्शी के लिए इस गीत की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए फिल्म हीरो के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत तो यहीं खत्म होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक चार वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की।

0: सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।